0: कोई मोटा लाला, कोई संतरी जी, कोई मंत्री जी, कोई या बोले, कोई वाह बोले, मैंने उठे ले गया, मैंने भटे ले गया, मैंने रुपया खिलायो, मैंने बड़ा धमकायो, मैं फेर भी ना मानी, मैंने मन में ठानी।
1: तू काय बोली, तू काय बोली,
0: मेरी चोली तो देख, मेरी बोली तो देख।